आज हम गुरु नानक के शरीर के दर्शन करते हैं, उनके चरणों की छो प्राप्त होती है। कितने बड़े भाग होते हमारे, लेकिन गुरु नानक शरीर में नहीं है तो कुछ आनंद कम आता है। गुरु अर्जन देव जी इस भेद को खोलते हैं, भाई गुरु नानक की वाणी तुम प्यार से पढ़ोगे, श्रद्धा से वाणी के दर्शन करोगे तो उसमें से ही गुरु नानक के दीदार है। ऐसा लगेगा जैसे प्रत्यक्ष गुरु नानक के वचन सुन के आए।

तो जानता है, गुरु सूरज के मापिक है। ये बात अलग है, हम लोग खिड़कियां और दरवाजे बंद कर लेते हैं। ऐ सूरज तुम्हारी रोशनी नहीं चाहिए, फिर कहें सूरज हमारे घर में नहीं आया, भाई भूल तेरी। सूरज तो हाथ दे रहा है, दस्तक दे रहा है, तेरे दरवाजे पर खड़ा है, लेकिन तुमने दरवाजे बंद कर रखे हैं। गुरु नानक तो तेरे दरवाजे के बाहर खड़ा है, पर तुमने अपने दिल के दरवाजे बंद, दरवाजे खोल।

0: दुख जाए पौड़ी।
1: सेव कीती संतोखी जिन सच्चो सच त्याया, उन्हें मंदे पैर न रखे हो कर सुख धर्म कमाया, उन्हें दुनिया तोड़े बंधना अन पानी थोड़ा खाया।

तेरे दर्ज तैगा जोर अगर थवाओ द्वापर तपे का सत अगर थवाओ कल जुग रथ अग्न का कूड़ अगर थवाओ शाम कैसे तुम्र

पलाने पौने हर रंगी हर सुमारिया कोठे मंडप माड़ियां लाए बैठे कर पासारिया चीज करन मन भाव दे हर पुजन नाही हारिया कर फरमाए सिखाया वेख मैं

जित मुखदा सलाहिए पागरती चार नानक तिम कुजले ते सच्चे दरबार पौड़ी सब को आखे अपना दिसना ही।

0: You're listening to SikhNet Radio, broadcasting live Gurbani Kirtan 24 hours a day from around the world.
1: जिनों का इष्ट साधक है वो कम प्रयास करते हैं, जिन्हों की हुई बंदगी उत्ते विश्वास है वो बंदगी करके ये नहीं आखते बंदगी की ते मिले या कुछ नहीं। लबों पे मुहरे खामोशी दिलों में याद करते हैं, चुपदा ताला उन्हां दे बुलां उत्ते लगा है, पर अपने मन विच अपने प्यारे का स्वास स्वास सिमरन करते ने, बंदगी करते ने। बंदगी कौन करता है जिन्हों उस उत्ते विश्वास है, नहीं तो किसे नू की लोड़ है। जे विश्वास नहीं तो कुछ नहीं। बंदगी करता रहा, बंदगी कीती है, मिलिया कुछ नहीं। अज मस्जिद विच नहीं जाना, अज मैं नमाज नहीं पढ़नी, अज मैं इबादत नहीं करनी। क्यों इबादत क्यों नहीं करनी? कई वरे इबादत कीती है, बंदगी कीती है, जे इना चिर बंदगी करके भी कुछ नहीं मिलिया तो फिर बंदगी किन्ना चिर कीती जानी है। अपने घर विच आकड़ के बैठा है, घर विच बैठियां बैठियां वो समा आ गया, बाहर दियां दलीजां वल ध्यान पिया, दलीजा विच बड़े सत्कार नाल अपना मूह कुत्ता उस दियां दलीजां विच रख के बैठा है। वाह बई वाह, छम छम रोण लगा, मन नूं बड़ी वड्डी सारी लानत पाई, कहण लगा इह कुत्ता है तू इस नूं अपने घर विच रखे आए, ए तां खसम वाला खवाउंदा है, तू इसका साई खवाउंदा है, पर जे तू अपने खसम की बंदगी विच रात जागिया है ते अपने आप नूं एडा वड्डा पीर सदाउणा है, आकड़ के अपने घर विच बह गया मैं बंदगी नहीं करनी, जागिया ते उसकी वफादारी विच है अपने मालक दी, तेरे नालों ये चंगा है। तू ते रात किसे वेले सौ जांदा होवेगा, पर ये कुत्ता तेरी वफादारी विच सारी रात जागदा होवेगा। मन उत्ते बड़ी वड्डी ठोकर वजी, राती जागे ते पीर सदा, रात जाग के अपने आप नूं पीर सदवाउंदा है, राती जागे तां पीर सदावे, पर राती जागण कुत्ते मालक दा दर कदे नहीं छड्दे, भावें सौ सौ खावण जुत्ते। करदा रखिया होया कुत्ता दुरकार के बाहर कढ दिंदे हां, पर थोड़े समय तों बाद उन्हूं फिर अपनी दलीजा विच वेखते हैं, क्योंकि उस कुत्ते दा अपने मालक नाल अथाह प्यार है। उसका नमक हराम नहीं करता, जिसका खांदा है उसका हराम नहीं करता। पर इंसान जो है जे जुगचारे आरजा होर दसूनी होए, नवा खंडा विच जानिए नाल चले सब कोए, चंगा नाम रखाए के मेरा नां चंगा बन जावे, सारा नालों उच्चा मैं बन जावा, चंगा नाम रखाए के जस कीरत जग ले, सारी दुनिया का जस मैं खट लवा। पर गुरबाणी फैसला करती है जे तिस नजर ना आवई ता बात ना पुछेगी, जिन्ना चिर तू उसकी नजर थले नहीं है, उसकी छतर छाया अपने उपर नहीं मनता, उन्ना चिर कुछ नहीं है। तीर्थ वरत अरदान कर मन में धरे गुमार, नानक ने फल जातते ज्यो कुंचर इसनान। जिवें एक हाथी पवित्र जल नाल इशनान करके मन की पूर्ति उन्ना चिर नहीं जिन्ना चिर मिट्टी कट्टे दियां सुंडां भर के अपने उत्ते नहीं सुट लैंदा। पौंक पौंक के रात गुजारन तेरे रूड़ियां सुते, चलो बुलिया यार मनाला नहीं ते बाजी लैते, अजे जित गई तू हार जावेगा।

तेरी कुदरत तू ही जाने और ना दूजा जाने, तेरी कुदरत तू ही जाने और ना दूजा जाने, जिसनु कृपा करे मेरे प्यारे सोई तुझे पछाने, तेरे भक्ता को बलिहारा खान सुहावा सदा प्रभु तेरा, रंग तेरे अपारा रंग तेरे अपारा, खिन में अवर खिने में अवरा अचरज।

लेकिन इतने महाराज कहते ने कि भटकना थक गई, थका देन वाली गल थक गई, श्रम थक। अरे उन्हां दी गल है जिन्हां नूं साहिब ने अपनी बाणी दे लड़ लाया है, अपना जस बख्श

साहेब श्री गुरु नानक देव जी ने शब्द कीर्तन द्वारा इस जलंदे जगत नू तारन लई गुरमत संगीत परंपरा दी दात बख्शी।

ते मौलिक स्वरूप नू प्रचारण दी सेवा विच लीन है। आओ सरवण करिए राग निर्णायक कमेटी द्वारा प्रवाणित स्वरूपा अनुसार शब्द कीर्तन शब्द हजारे पातशाही दसवीं।

मेरी चोली किसे ने नहीं भरी। इस वास्ते मैं तेरे दरबार विच आया और सुने जो तेरे दर ते आउंदा है उदी चोली कदी खाली रह नहीं जांदी। ओ सदा तेरे दरबार तो चोलियां भर के जांदा है। सत सगत बोलो श्री। इस वास्ते हक हक आगाह गुरु गोबिंद सिंह शाहे शहनशाह

देख रहा पता गुरु गोबिंद सिंह, जानू दिल रहा गुरु गोबिंद सिंह, साहिबे साहिबे अकलील गुरु गोबिंद सिंह, जिले हक तसलील गुरु गोबिंद सिंह। आप कहते हैं तू दुनिया दे ताज दा मालक है, संसार दा मालक है, और अकाल पुरख वाहेगुरु दे पानी नू मनन वाला सात सगत बोलो श्री, क्योंकि तेरे जैसा संसार ते और कोई शहनशाह ना होया और ना होएगा। तू भगत भी है, तू दानी भी है, और तू शुरवीर भी है। भगत एडा है कि जदों आनंदपुर का किला उजड़ गया, पिछे मुगल सेना लगी हुई, 500 के करीब सिंह धन गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह दे नाल, ते जाउंदियां जाउंदियां जदों अमृत वेला होया ते साहब जी ने आख्या भाई दया सिंह कितने दिन हो गए हन कीर्तन नहीं सुने, ते वेखना भाई अमृत वेला हो गया, आशा दी वार दा समा हो गया, कोई है कीर्तनिया पर सानू कीर्तन सुनाओ सात संगत बोलो श्री। भाई दया सिंह जी कहन लगे पातशाह पिछे दुश्मन फौज आ रही है, इस वेले तां किते दूर निकल जाइए चंगा है, ते आप कीर्तन सुनन दी कह रहे हो। आख्या हां दया सिंह, कीर्तन आत्मा दी खुराक है, आत्मा का भोजन है। कितने कु सिंह हन नाल? आख्या गरीब निवाज कोई लगभग 500 सिंह हन नाल। आख्या फिर अधे कीर्तन विच बह जाओ, ते अधे थोड़ी दूरी ते मोर्चा ला के खड़ार दे सारे हन, जे दुश्मन दल आवे ते उसनू रोक के रखन। कीर्तन आरंभ हो गया, उत्थे दुश्मन दल ने चढ़ाई कर दिती, सिंह लड़ रहे हैं, इत्थे साहब जी अडोल कीर्तन बह के सुन रहे हैं सात सगत बोलो श्री। इत्थे आशा दी वार दी समाप्ति हुई, सो करे जे तिसे रजाए, सो करे जे तिसे रजाए सुध। साहब जी ने अकाल पुरख दे चरणों विच शीश चुकाया, ताई टांगू ने आके खबर दिती खुफिए कि साहब जी आ दुश्मन दल मारो मार करता आ रहा है, ते जेड़े लगभग 250 सिंह अगे मोर्चे ते खिलारे सन सारे शहीद हो गए। सत संगत बोलो श्री। भाई दया सिंह दे नैन कटोरे वाग आए, ओ गरीब निवाज एक कीर्तन दे पिछे 250 सिंह शहीद करा दिता। साहब जी कहन लगे दया सिंह आ बाकी कितने बच गए हैं? आख्या लगभग 250। आख्या ए भी 250 शहीद हो जाते, दया सिंह तू भी शहीद हो जाता, मैं भी शहीद हो जाता, लेकिन असी जो इत्थे बह के अज उस अकाल पुरख दे चरणा दे नाल कीर्तन विच जुड़े हैं, उसकी जड़ी भगती की है, असी ए सौदा सस्ता किया। सत संगत बोलो श्री। भगत एडे ते आख्या दानी तेरे वर्गा संसार ते होर कौन है, पिता नू शहीद करा दिता धन गुरु तेग बहादुर सच्चे पातशाह नू, आप दे उस वेले 9 साल की उम्र सी। हिंदू धर्म की रक्षा की खातर धन गुरु तेग बहादुर सच्चे पातशाह ने शहीदी पाई, आनंदपुर का किला उजड़ गया, 4 साहबजादे बाबा अजीत सिंह जी, बाबा जुझार सिंह जी, बाबा जोरावर सिंह जी, बाबा फतेह सिंह जी, इन्हां सिखां दे उपरों धर्म की रक्षा की खातर 4 बच्चे शहीद करा दिते। माता नूं कुर्बान कीता धर्म की खातर, सारा परिवार खेरू खेरू हो गया, आ सारा सरबंस दान कर दिता, तेरे वर्गा संसार ते होर दानी कौन होएगा? सत संगत बोलो श्री।
ਆਖਿਆ ਔਰ ਸ਼ੁਰਵੀਰਤਾ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਡੀ ਕਿ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਬੇਅੰਤ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੀ ਫੌਜਾਂ ਘੇਰਾਂ ਪਾ ਕੇ ਖੜੋਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਅੰਦਰ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਸਿੱਖ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਕੱਚੀ ਗੜੀ ਦੋ ਦੋ ਚਾਰ ਚਾਰ ਸਿੰਘ ਕਰਕੇ ਜਾਵਣ ਬਾਹਰ ਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੇ ਕਈ ਦਲਾਂ ਦੇ ਦਲ ਨੂੰ ਮਾਰ ਮੁਕਾਉਣ ਤੇ ਆਪ ਫਿਰ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪਾ ਜਾਵਣ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਬੇਅੰਤ ਫੌਜਾਂ ਨੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀਆਂ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਕੱਚੀ ਗੜੀ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਾ ਕੇ ਖਲਾਰਿਆ ਤੇ ਆਪ ਘੋੜੇ ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਕਿ ਹਿੰਦ ਦਾ ਪੀਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੇ ਕਿਸੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਮਤ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਦੱਸੋ ਸਤਿ ਸੰਗਤ ਬੋਲੋ ਸ੍ਰੀ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਨੂੰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਪਿਆ ਸ਼ੋ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਵਾਹ ਕੇ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉਸ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਕੱਚੀ ਕੜੀ ਵਿੱਚੋਂ ਅਗਾਂ ਲੰਘ ਗਏ ਦੁਸ਼ਮਣ ਘੇਰੇ ਨੂੰ ਤੋੜ ਛੱਡਿਆ ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਸ਼ੁਰਵੀਰ ਹੋਰ ਕੌਣ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਭਗਤ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਦਾਨੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਸ਼ੁਰਵੀਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਤਿ ਸੰਗਤ ਬੋਲੋ ਸ੍ਰੀ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਮੁਸੱਵਰ ਖੇਚ ਲੇ ਤਸਵੀਰ ਜੇ ਤੁਝ ਕੋ ਰਸਾਈ ਹੈ ਦਸਮ ਗੁਰੂ ਬੈਠੇ ਮਸਲਤ ਪਰ ਸਭਾ ਆਪਣੀ ਲਗਾਈ ਹੈ ਯਹਾਂ ਕੇ ਸ਼ਹਿਨ ਸ਼ਾਹੋ ਸੇ ਤੇਰੀ ਤਸਵੀਰ ਅੱਛੀ ਹੈ ਯਹਾਂ ਕੇ ਸ਼ਹਿਨ ਸ਼ਾਹੋ ਸੇ ਤੇਰੀ ਤਸਵੀਰ ਅੱਛੀ ਹੈ ਮਿਲਾ ਤੁਝ ਸਾ ਮੁਝੇ ਮੁਰਸ਼ਦ ਮੇਰੀ ਤਕਦੀਰ ਅੱਛੀ ਹੈ ਸਤ ਸੰਗਤ ਬੋਲੋ ਸ੍ਰੀ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਉਸਤਤ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ

पहले पैरे आपने उठ के तीजे पैरे उठ के तुर पैण, क्योंकि पहले दो पैर आप कीर्तन नाम विच जुड़े रहिंदे, ते जदों तीजा पैर हुंदा।

उल्टी प्यारी टुरना किते गुरु सच्चे पातशाह वल मेरी पीठ न हो जाती। सात सगत बोलो श्री तुरते हो पिछली प्यारी अद्दा।

जो सेवा तो बिना चला गया। आज 12 साल का आखिरी दिन है, आज एडा चखड़ चल रहा है, एडा मीह पै रहा है कि रस्ता नजर नहीं आउंदा। आप पुठी प्यारी तुरदे हुए अद्धे रस्ते

पाछा इथे हुण पिठ हो रही है, माफी दे दे। ते फिर व्यासा वाल तुर पे, गागर जल्दी भरी सिर ते चुकिया। अज एडा मी पै रहा है, जखड़ चुल रहे हैं।

0: तिस गुर को सद करी नमस्कार, तिस गुर को सद जाओ बलहार, सतगुर के चरण धोए धोए पीवा, गुरु नानक जप जप सद जीवा।
1: You are listening to CNET.

मेरे मालिक मैं तेरे नाल जुड़ जा, तेरी गलवकड़ी विच आ जा, तेरे विच समा जावा, मन करके तन करके, अधूरा नहीं, केवल तन करके जुड़िया हुआ, मन ना जुड़िया हुए ऐसा भी नहीं। ते जे मैं ऐसे बहाने करा कि मेरा तो मन जुड़िया है, तन की केड़ी लोड़, प्यार तो इस तरह कोई नहीं होता। जिन्होंने प्यार किया है महाराज उन्हां दी गल करदे ने, गुरसिखां दी गल करदे ने, भगतां दी गल करदे ने, संतां दी गल करदे ने जिन्होंने प्यार किया है। ते प्यार किया तो फिर भरपूर किया, प्यार च अधूरेपन की गल होती। जब भरपूर प्यार करना तो फिर तनो मनो प्यार करना। तुसा वेखिया सुहागना पति नाल मिठा बोल दिया ने, ते पति दी प्रसन्नता वास्ते तरह तरह के शिंगार भी कर दिया, पति दी प्रसन्नता वास्ते चंगे पकवान भी पकाउंदियां। पति थोड़ी देर पछड़ जावे घर आउण तो पौड़ियां होईयां फिरदियां रहिंदियां ने, मन विच भी प्यार है। शरीर करके भी पति दी प्रसन्नता लैण वास्ते प्रयत्नशील ने। ते जे कोई कहे मैं तां अंदरों प्यार करदा, बाहरले प्यार की केड़ी लोड़ है, घर बैठा रवे, गुरुद्वारे आउण दी थां नहीं, गुंजाइश नहीं, समा नहीं, अधूरा प्यार लैके बैठा होगा अब्बल तां होना ही कोई। एक ऐसा भी हो सकता है जिहड़ा गुरुद्वारे आके बैठ गया, मन इत्थे नहीं पिया जुड़दा, मन किते संतान ते रह गया, मन किते मकान ते रह गया।

तारीफ करदे ने। आम चंगे चंगे विद्वान पुरुषां ने गुरु महाराज ने भी धरती नूं माता कहा है। धरती बड़ी चंगे सुभा दी है। भाई साहब कहंदे ने इदां दा सुभा बना लै।

लक्षण बदल गए, सुलक्षणे हो गए, शुभ लक्षण हो गए। लक्षण कहिंदे ने जो कुछ नजर आउंदा हो। मनुख दी अंदर दी रहनी जिस वेले बाहर आ जांदी है लक्षण कहाउंदी। सतगुरु क्योंकि मनुख दी रहनी सुधार देंदे ने, इस करके जबान मिठी हो गई लक्षण चंगा है, चाल ठीक हो गई करते पुरख ताल दिवाया, जिंदगी ताल विच आ गई, बेताली जिंदगी ताल विच आ गई, चाल ठीक हो गई। और एक कहने लक्षण जेड़े ने रफ्तार दस्तार गुफ्तार यही तो गल्लां होंदियां ने जिन्हां तो बंदा पछाणिया जांदा। पग किहो जी बनदा भाव इस नूं अपने सजन सजाउण दा ख्याल भी है कि नहीं। और यही वजह है कि लोग तां कहिंदे ने पग बननी, लेकिन गुरु का सिख कहिंदा दस्तार सजाउणी है, क्योंकि उन्हूं बड़ा ख्याल है कि मेरे सजन दा सवाल है, मैं सजिया सजाया गया ते सज के रहना मेरा काम। दस्तार तो पता लगदा है इस बंदे दी रहनी बहनी की है, भाव वस्त्र पाउण तो रहनी बहनी तो। मनुख दे अंदर दी सफाई दा ते अपने आप नूं बना के रखण दी रुचि दा पता लगदा, चाल तो पता लगदा इनू तुरना आउंदा, चाल तो ही चाल चलण दा भी पता लगदा, ते गुफ्तार तो जबान तो बोलण तो भी पता लगदा इस दे अंदर की है। जो जीए होए सो उगवे, जबान तो ही निकलेगा जो अंदर है, अंदर बाणी है ते मुंहों बाणी निकलेगी, अंदर प्यार है ते मुंहों प्यार निकलेगा, अंदर नफरत है ते मुंहों गाला निकलेंगी। सतगुरु की कृपा दे नाल मनुख दे लक्षण बदलते, पर उदों बदलते जदों गुरु के मार्ग पै जाते।

तब एक मानस दे ही पाए मानस जन्म अमूल पायो वृथा काहे गवाओ गुर सेवा ते भगत कमाई तब एक मानस दे ही पाए इस दे को सिवरे देव पजो गोविंद भूल मत जाओ पजो गोविंद भूल मत जाओ मन सिम का ही लाओ

जब लग बिकल पाई नहीं बाणी पज लै रे मन सारे पानी अपना पजस पजस कब पाई आवे अंत ना भजया जाए ए तेरे अवसर ए तेरी बार ए तेरे अवसर ए तेरे बार कट पीतर तू देख विचार

दो ए तनो मिथ्या जानो या भीतर जो राम बस्त है साचो ताए पछानो पई प्राप्त मान देव रिया गोविंद मिलन की ए तेरी बरिया।

गोविंद भजन बिन बिरथे सब काम, जो किरपन किए निरार्थ दाम। गोविंद भजन बिन बिरथे सब काम, जो किरपन के निरार्थ दाम। फिरत बहुते जुगहारे हो, फिरत बहुते

कई जन्म पै कीट पतंगा, कई जन्म गाजर मीन कुरंगा, कई जन्म पंखी सर्प होयो, कई जन्म पंखी सर्प होयो।

माता जी दा कोरा जवाब सुन के जलाद परत आया, कंध मुकम्मल तैयार हो गई, साहिबजादे असहे ते अकह कष्ट सहार दे होए शहीदी पा गए, धरती कंब उठी, आसमान डोल गया।

अपने अमृतमयी बचना विच राग आसा विच वर्णन कर दे हे मेरे वाहिगुरु तेरी जो सर्व व्यापक है जिथे भी मैं जाना उथे मेनू तू ही तू नजर आना जे मैं कदी मक्के विच जाना ते उथे मेनू तू नजर आना ते जे किसे मंदिर विच जाना उथे

गुरु के पुत्र हो गए। ते गुरु के पुत्र सत्संगी जिथे मिलके बैठ के प्रभु जस करदे ने, जेड़ा आके उन्हां सत्संगियां च रल गया, गुरु पुत्रां च रल गया, प्यार दे रंग च रस्ता होया, प्रभु जस कर रहे हैं, प्रभु जस मान रहे हैं। और ये धर्म का मार्ग